2125 999 98 42 52 496 98 41 93 686 र 98 24 76 778। संखुवा सभा बहुमुखी क्याम्पस चैनपुर, चैनपुर नगरपालिका 6, संखुवा सभा।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 8 AM
3: अहिले बिहानको 8 बज्यो।

0: तिमीलाई छोड जानु मेरो रहर होइन, बाध्यता हो। म जहाँ भए पनि मेरो मन पनि तिमी
1: रबिन जी, मजबूरी का नाम देकर आप मुझे छोड़कर जा रही हो ना, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी पूरी जिंदगी आपका इंतजार करूंगी।
0: इन मेरे याद आएगा, मैं देखो चीनी होगा, आप फिर आप लोग सुखा।

0: रेडियो अरुण
1: अरुण
0: 97.6 MHz हरपल
1: हर
0: तपाईं सँगै।
2: रेडियो अरुण टाइम चेक 8 PM
3: अहिले रातको 8 बज्यो।